0: भविष्य उज्जवल छ।
1: बोल्यो हरियो बोल्यो सुनिराख्नुहोस् है।
2: सुन नीलो आकाश चाहिन्छ नीलो नै एक्सट्रीम एनर्जी एक्सट्रीम अन टेक एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
3: अरे वाह, देश के स्वादिलो रेडियो रेडियो ऑडियो एक कान दुई कान मैदान इसमें।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: ए गान्टे मुला,
2: किन फर्सी?
1: त्यस्तो रक्सी खाने मान्छे कसरी छोड्यो हँ?
2: पुरै बत्तल सकाएर छोडे नि।
0: कमेडी क्याप्सुल।
3: अडियो अडियो। ए काम धोई काम मैदान। यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: मैले यो हाम्रो समाजलाई कहिल्यै बुझ्न सकिन। केटीहरूले चाहिँ छोटो लगाए मोडर्न, अनि लामो लगाए फेसन रे, अनि हामी केटाहरूले चाहिँ छोटो लगाए भाइको, अनि लामो लगाए चाहिँ दाइको रे। कोही तरिका हो?
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: एडियो एडियो। एक काम दुई काम मैदान, यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: ए फर्सी,
2: किन गान्टे मुला?
1: मेरो साह्रै धेर सुत्ने मानिस छ भने मलाई भोलि बिहान 5 बजी उठाइदेऊ है।
2: हस्, 5 बजी पछि खबर गर्नु, म उठाइदिइहाल्छु नि।
0: कमेडी क्याप्सुल।
3: एक काम दुई काम मैदान, यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल
1: कटियस ने मजे जरे मर चुकी क्या हो
2: घर में बुढ़ी को लात खाए पछि आज के खाइश बंदा लेट पीस खा रहा को बनने को कमी छैन रे हाम्रो देश में
0: कॉमेडी कैप्सूल
3: अडियो अडियो
4: एक कान दो कान मैदान
5: यस मैं छ मजा
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: यो पालोमा त हिन्दी एसएमएस पठाएछ। गम ओ चीज है, गम ओ चीज है, गम ओ चीज है, क्या चीज है? गम ओ चीज है, गम ओ चीज है, जिससे कागज चिपकाए जाते हैं।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
2: ऑडियो ऑडियो
0: एक काम दो काम मैदान,
2: इसमें छ मजा
0: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: यदि स्वीट ड्रीम देखने हो भने एक ग्लास सुगर आँखा में हालेर सुत्ने, गजब का आइडिया हो क्या हो? यदि स्वीट ड्रीम देखने हो भने एक ग्लास सुगर आँखा में हालेर सुत्ने, यदि मसाला ड्रीम देखने हो भने एक ग्लास मसाला आँखा में हालेर सुत्ने। ओहो
0: कॉमेडी कैप्सूल।
2: एडियो ऑडियो
0: एक कान दुई कान मैदान,
2: यसमै छ मजा।
0: फुल टाइम कॉमेडी।

0: यार।
1: कॉमेडी कैप्सूल
0: ऑडियो ऑडियो
1: एक काम दो काम मैदान
0: यस मैं छ मजा
1: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: ए फर्सी, त्यहाँ हेर त, ऊ त्यो केटी मलाई हेरेर मुस्कुराइरहेछ।
2: त्यो त के हो र, जब मैले पहिलो पटक तिम्रो अनुहार हेरेकी थिए, तीन दिनसम्म मैले हाँसो रोक्न सकेकै थिइन।
0: कमेडी क्याप्सुल।
3: अडियो अडियो। एक कान दुई कान मैदान। यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: संता, इससे पहले कि हम अपनी मोबाइल कंपनी में आपको नौकरी दें, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो पहले ये बताइए कि सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है?
2: कार्टून नेटवर्क।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
3: ऑडियो ऑडियो एक कान दो कान मैदान। यस मैं छ मजा
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: तुझे पता है बंता, नौकरों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।
2: मैं क्यों, क्या हुआ?
1: मैंने और मेरी बीवी ने प्यार करने का एक कोड रखा था। वो कोड था चलो चीनी खाएं, और ये कोड मेरे नौकर ने सुन लिया। एक दिन मेरा नौकर मेरी बेटी के साथ प्यार कर रहा था और मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।
2: अच्छा, फिर तूने क्या कहा?
1: मैंने अपने नौकर को कहा, अबे साले ये क्या कर रहा है? मेरा नौकर कहता, चीनी खा रहा हूँ मालिक। मैंने उसे कहा, चीनी ही खानी थी तो खुली बोरी से खा लेता, नई बोरी खोलने की क्या जरूरत थी।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
3: एक काम दो काम मैदान, यस मैं छ मजा
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: संता जी, आपका घर इतना दूर है कि मुझे 5 किलोमीटर दूर आना पड़ा आपका ये पार्सल पहुंचाने के लिए।
2: ओ पोस्टमैन जी, आप इतनी दूर क्यों आए? इससे अच्छा था कि आप इसे पोस्ट ही कर देते।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
3: अडियो अडियो। एक काम दो काम मैदान। यस मैं छ मजा।
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: पप्पू तुम हिस्ट्री में फेल क्यों हो गए?
2: पापा सभी क्वेश्चन उस टाइम के थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
3: अडियो अडियो एक कान दो कान मैदान। यस मैच मजा
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ।
2: वर मांगो वत्स।
3: प्रभु जी, जैसा आप सोच रहे हैं मैं वैसा नहीं हूँ, मुझे वधू चाहिए।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
4: अडियो अडियो। एकान दुई कान मैदान। यस मैं छ मजा।
5: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: उस लड़की का क्या हुआ जिसे तू प्रपोज मारने गया था?
2: ओए बंता, मैंने उसे प्रपोज मार दिया। मैंने उसे कहा कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ।
1: अच्छा, तो उसने क्या कहा?
2: वो बोली, मैं तेरे से एक साल बड़ी हूँ।
1: अच्छा, तो तूने क्या कहा?
2: मैंने कहा, कोई बात नहीं सोनिए, मैं तुझसे अगले साल शादी कर लूंगा।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
3: ऑडियो ऑडियो एक कान दो कान मैदान। यस मैं छ मजा
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: डॉक्टर साहब, मैं सुसु 6 बजे करता हूँ और पॉटी 7 बजे करता हूँ।
2: अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है?
1: पर डॉक्टर साहब, मेरी आँख 8 बजे खुलती है।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
3: जियो जियो। एक काम दो काम मैदान। यस मैं छ मजा।
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: जब सावित्री कञ्चनजङ्घा रहन्छ तपाईँको साथ,
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास जहाँ मन बस्छ।
2: अरे वाह, देश के स्वादिलो रेडियो रेडियो ऑडियो एक कान दुई कान मैदान इसमें।

0: सुहाउँछ कमेडी क्याप्सुल
1: हैन के भो हजुरबा घाँस काट्न जान ए भन्दा रिसाउने नातिनी आज नाक काटेर गई
0: कमेडी क्याप्सुल
2: एडियो अडियो
0: एक कान दुई कान मैदान यसमै छ मजा
3: फुल टाइम कमेडी

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: हैन के भयो ससुराबा?
2: म अल्छी भएर अल्छी गरे कि अल्छी गरेर चाहिँ अल्छी भए, खै के भयो के भयो?
0: कमेडी क्याप्सुल
3: दियो दियो काम धोई काम मैदान, यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: एक्सपर्ट थापाथली चौकैमा।
1: फोन नम्बर चाहिँ
0: 9851 31 60 60 9851 31 60 60 बलियो घर निर्माणको सम्पूर्ण आधार घर दरबार थापाथली चौकैमा।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: हाँस्नु कि रुनु, बेरोजगार भएर होला कि लोभी पनि यतिसम्म भयो कि फ्रुटी खाँदा पनि चार पाँच चोटि टर टर नपारी बट्टा फाल्ने मन लाग्दैन।
0: कॉमेडी कैप्सूल
2: अडियो अडियो एक काम दुई काम मैदान, यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: एकजना साथीले भन्यो, भर्खर भर्खर लभ परेको यार, क्या मनमा पनि कुछ कुछ होता है। मैले भने, हो सुरु सुरुमा लभ पर्दा चाहिँ कुछ कुछ होता है, बिहे पछि चाहिँ किच किच होता है।
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: एडियो एडियो। एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल। मेरो नजरमा त तपाईँ एकदमै खराब भइसक्नु भयो ज्वाइँ।
1: यति राम्रो ज्वाइँलाई खराब देख्ने आँखा दान गर्दै भयो त।
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: अडियो अडियो। एक काम दुई काम मैदान। यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल
1: कटियस ने मदेशरे मर चुकी क्या हो
2: घर में बुढ़ी को लात खाए पछी आज के खाइस बंदा लेग पीस खा रहा को बनने को कमी छैन रे हाम्रो देश में
0: कॉमेडी कैप्सूल
3: अडियो अडियो एक कान दो कान मैदान यस मैं छ मजा
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: मात्र पुग्छ, न केही चताना भई न केही कोडारा। एकान दुकान मैदान भयो चारैतिर, एकान दुकान मैदान भयो चारैतिर।
1: देशकै स्वादिलो रेडियो, रेडियो अडियो एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मज्जा।
2: पाक मुख खानु जस्तो।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: यदि स्वीट ड्रीम देखने हो भने एक ग्लास सुगर आँखा में हालेर सुत्ने, गजब का आइडिया हो क्या हो? यदि स्वीट ड्रीम देखने हो भने एक ग्लास सुगर आँखा में हालेर सुत्ने, यदि मसाला ड्रीम देखने हो भने एक ग्लास मसाला आँखा में हालेर सुत्ने।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
2: अडियो अडियो
3: एक कान दो कान मैदान,
4: यसमै छ मजा।
5: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: रामले धनुष तर्दा सीता खुसी, कृष्णले बाँसुरी बजाउँदा राधा खुसी। रामले धनुष तोड्दा सीता खुसी, कृष्णले बाँसुरी बजाउँदा राधा खुसी, तर मैले सिट्टी बजाउँदा तिम्रो बाउ किन बेखुसी यार।
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: एडियो एडियो।
3: एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।